0: Cogeco.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल के हाल चाल है दोस्तों डोगरी रेडियो सुन दा मता मता स्वागत है मैं हाँ डोगरी दी ती नेहा शर्मा मैं अज तुसें सुनानी हाँ एक डोगरी कविता बड़ी गै अच्छी बड़ी गै मीनिंगफुल कविता तुस ध्यान लाइए सुनियो धियां ते होंदियां ने पुत्तरे शा प्यारियां कुख बिच मारने दी करो नी तैयारियां इंदे जंदे गे होई जान घरे बिच बरानियां धियां ते होंदियां ने मन्नता बगानियां हसदियां ने जियां फुल्ले दियां क्यारियां धियां ते होंदियां ने मन्नता बगानियां भरिए डुआरियां होई जान बगानियां गुटियां पटोले छोड़ी जान निशानियां घर घर खेडा इंदा लगन नियारियां दुख जरिए भी मुआ नहीं बोलदियां भेद दिले दे कदे नहीं खोलदियां दाऊ दिने दियां परौनियां बेचारियां धियां ते होंदियां ने पुत्तरे शा प्यारियां।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं पता तुसी सारे की ये कविता बहुत अच्छी लगी है क्योंकि है बड़ी अच्छी बड़ी मीनिंगफुल है। पर इस कविता के माध्यम कला मैं स्नेहा देना चाहनी हाँ साढ़े पढ़े लिखे समाज जो अज भी कुड़िए ते मुड़े च भेद करते हैं। अज भी अगर उन्हें पता लगी आ कि ये कुड़ी होने वाली है तो मिनट नहीं लाते उसी खत्म करने च। अज भी कोई ना कोई टब्बर ऐसा है जिथे अज भी मत्थे टेके जाते हैं कि कुड़ी नहीं हो तो मुड़ा हो। अज बड़ी तरक्की भी हो गई है तो बड़े सारे परिवार एक एग्जाम्पल भी सैट करते हैं उन्हें कुड़ियों के जमने पर बड़ी खुशी मनाई जाती है बड़े अच्छे तरीके कने सैलीब्रेट करिए समाज ही सनेहा भी देंगे ने। पर फिर भी बिलीव मी अज भी उ लोग हैं जो पढ़े लिखे दिन पर फिर भी कुड़ियों तो मुड़ियों भेद करते हैं तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि उनके घर मुड़ा के जमे कुड़ी नहीं हो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अस गल करा दे हे दुग प्रदेश दी तीएं दी, तीएं ते मुड़े चोने आले पेट पाओ दी। मैं आज तुंदी आरजे डोगरें दी ती नी। हाँ, मेरा ट्विटर अकाउंट है डोगरन सोल करने, तो सुथे में ही फॉलो करी सकते हो। ते अगर अज दी तीआं अगर झांसी दी रानियां ते ओह सती ते सवित्री दा भी किरदार हन। हर तरह का एक मल्टी रोल प्ले कर दिया नाच दिया तीया। तो मैं तां गई इस रेडियो के माध्यम तुंदे सारे कोला फिर रिक्वेस्ट करना चाहनी हाँ कि कुड़े ते मुड़े च बिल्कुल भेदभाव बंद करिए, उन्हें बराबर का दर्जा देइए। तो उन्हें तुस ये मेरा स्नेहा अगे भी शेयर सारे जरूर करो। तो हूँ मैं इजाजत दो, मेरे जाने का टाइम हो गया है। फिर मैं परतिए मिलगी तुंदे कन्ने एक नवी और कोई पेशकश दे कन्ने। बाय बाय।

0: 2% jump asas, guasas, hebisas, nandit hosi bisas, bole sone hal, sasiyal kal.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

की तू आस मेरे प्यारे, समझ आ गई लफ्ज़, पंक्तियां समझ आ गईं। सबना की तू आस मेरे प्यारे, सुनो ध्यान।

0: ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਕਾਲ 416-265-2222। ਜੇ ਗੰਡਮ ਕਾਲ 416-265-2222।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum,
3: the only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter. This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: 32-55-80
5: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वाशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $1,00,000 दी इनकम जनरेट करदी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222।
1: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto.

0: 32, 55, 80, 98।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: बंगलोर तो ऑन जान कर सकते हो, अगस्त च जाके सितंबर एंड या अक्टूबर च वापसी कर सकते हो। जे तुसी टोरंटो तो दिल्ली जाना हो जुलाई महीने दे विच वन वे टिकट लैके तो $1,049 की टिकट है, तो दो बैग्स दे नाल तुसी ट्रैवल कर सकते हो। $1,049 की टिकट जुलाई महीने के लिए। जे तुसी टोरंटो तो बैंगलोर जाना आ सितंबर दे विच वन वे टिकट लैके तो $845 की टिकट है, $845 की टिकट। तो जेकर तुसी टोरंटो तो दिल्ली जाना आ अक्टूबर महीने दे विच तां वन वे टिकट $970 दी है, $970 दी टिकट अक्टूबर दे लई। दो बैग्स दे नाल ट्रैवल करोगे टोरंटो तो दिल्ली। तो जे इन केस तुसी टोरंटो तो पैरिस जाना आ डायरैक्ट अगस्त दे विच जाके सितंबर दे विच वापसी $920 दी टिकट है पैरिस दी, $920 दी टिकट। तो तुसी ट्रैवल कर सकते हो। तो दियोल ट्रैवल्स नाल गलबात करो। ई टू बीको इन्हों का मेन हैड ऑफिस है, नंबर 905-588-5100, 905-588-5100, या ब्रैम्पटन दे विच ब्रांच एड्रेस ते कॉल हो सकती है 905-588-4200, 905-588-4200। दियोल ट्रैवल दे नंबर्स ने।
1: रेडियो प्रोग्राम है देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नाल जुड़े हो। किसी ना आदमी दे वाइफ दा बर्थडे सीगा ते वो किसी पोर्ट्रेट कोल गया, कहिंदा मेरी घरवाली दी पोर्ट्रेट बना, इस तरह दी तस्वीर बना, इन्नी सोहणी बना। वो कहिंदा गल ही कोई नहीं, जिहड़ा पोर्ट्रेट बनाउणा कहिंदा ऐसा स्केच बना के कहिंदा वधिया रंग भरूंगा, कहिंदा तस्वीर मोह बोलूगी। वो कहिंदा फिर रहण दे बनाउण, जे कहिंदा मोह बोलूगी फिर रहण नहीं दे। स्केच भाई ठीक है, वो कहिंदा भाई बाला तो पहली गल ही तू लिया के लिए आती है ना। रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश जुड़े हुए दोस्तों। स्पेक्स एक्सप्रेस वाले कहें कि तुम साढ़े को आओ तो ब्रांड सनग्लासेस पहुंची ने, अजक समर के यूज कर सकते हो। तो सिंगल बीजल इंजन उन्होंने 129 डल की ड्रील आई है, लंडन फॉग, लेवीज, रेंगलर है ना, मैनी मोर ब्रांड नेम है उन्होंने पास। तो प्रोग्रेसिव ग्लासेस भी है 258 दियाँ, इंश्योरेंस तो सारे कवर करेंगे। पहुँचो तो 35 रेजुलेशन ड्राइव कनेडी से स्टील, टेलीफोन नंबर 905-460-8888
0: जी,
1: 905-460-8888 टेलीफोन नंबर है। तो रेडियो प्राइम बेस प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो ने जुड़े हुए हो दोस्तों। साड़ी कोशिश होंगी है कि सुबह तो लैके इंडिया की पॉलिटिक्स चलती है, सारे आपां नूं पता ही है ना। तो जो साडा टाइम आउंदा फिर असीं उही रिपीट कर लां, जे तीजा नहीं आउंदा तो फिर गल नहीं बनदी ना।
0: बिल्कुल हाँ जी,
1: असीं चाहुंदे आ थोड़ा जिहा हल्का थोड़ा जिहा खुश करिए घर आउण लगे, पर बाद दे विच चार तो छे असीं फिर कनेडा दीआं गल्लां करदे आ सारीआं, जे न्यूज़ भी हुंदी है ते कनेडा दी नाल गीत संगीत भी बैलेंस नाल रखीदा ना, अगर तुसीं इंजॉय भी करो, एंटरटेनमेंट भी होवे, खबरसार भी कोई ना कोई हो जाए तुहाडे नाल। रेडियो प्राण विश प्रदेश नाल तुसीं जुड़े हो। टेलीफोन नंबर 905-564-4444 नंबर ने साडे स्टूडियो दे। ते ऑफकोर्स तुसीं कोई वधिया जिहा मिलदा नगमा कढ़िया लगदा
0: हाँ जी
1: आउण दिओ फिर आपां एक मिनट, मैं चाहुंदा थोड़ी ना कमर्शियल ले लिए।
0: हाँ जी,
1: अज रिकॉर्डर कोई लिया ही नहीं मैं है ना, तो ब्रेक ले लिए थोड़ी जी, फिर असीं आउणे आ वापस।
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी, जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
1: ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਫਾ ਮਾਰ ਤੇ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਓਨਰ ਨੇ ਔਰ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਸੋਫੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੰਸਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। 4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ, 5 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। 11x11, 10x10 ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ 24 ਰੀਗਨ ਰੋਡ।
5: ਕੋਡ ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 905-792-8053 9057928053 ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ ਔਰ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, ya Self-Employed di File, Gal ki, Immigration di har problem da solution lain lai, Community de jane pehchane, ate tajrabe kar Immigration Consultant, Gary Virk nu milo.
3: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho, ikko hi na, ate ikko hi tha. CIC Immigration, hune hi call karo, 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
5: इसे ले मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: ஈஸியா செகண்ட் மோர்கேஜ் ரீஃபைனான்ஸ் கிரமனோ சொன்னோம் தத்து சிவி அப்படிங்கட்டி மோட 1200 டெரி ரோட் ஈஸ்ட் யூனிட் 22 மிசிசாகா 416-804-2015 416-804-2015
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
2: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381